0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वाओ।

0: तू गाती है?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
1: हाँ।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना।
0: तेरी बार

0: Nada?
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताऊं।

0: ¿Tu gati?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना।
0: तेरी बात।